0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजी की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायनियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीति राम जोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और अब मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

0: تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ سامبان ورتمان دور میں رانانیتی سجداری کے ستر تک پہنچ چکے ہیں. دونوں دیشوں کے بیچ راجنیتک آرتھی سانسکرتک اور وشیش روپ سے شیکشک تتھا ویگیانک کھیتروں میں سہیوگ تیزی سے وکاسیت ہو رہا ہے. نمستے پیارے شروتاؤ, کاریہکرم تاجکستان اور وش کے اس نئے آنت میں ہم تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ ویگیانک ایوان شیکشی سہیوگ پر چرچا کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ شکشا وگیان اور سانسکرتی کے کھیتروں میں سہیوگ حال کے ورشوں میں وکاس کے ایک نئے استر پر پہنچ گیا ہے. آج سے ایک روتاجی ودیارتھی چین کے پرتشتھت وشو ودیالیوں میں ادھیائن کر رہے ہیں اور وبھن تراشی سنیوگ کاریہکرموں کے مادھیم سے اپنے گیان کوشال اور ویاوسایک انوبھاو کو سمردھ بنا رہے ہیں. چین کی ودیش نیتی میں شکشی سہیوگ کو وشیش महत्व दिया जाता है. शैक्षिक साझेदारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मानवता के साझा भविष्य वाले समुदाय की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में देखा जाता है. ये अवधारणाएं न केवल देशों के बीच संबंधों के विकास को प्रतिबिंबित करती है बल्कि विभिन्न राष्ट्रों और जनता के बीच मित्रता, आपसी समाज और विश्वास को मजबूत करने के लिए भी अनुकूल आधार प्रदान करती है. इसी कारण ताजिकिस्तान और चीन के बीच शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग लगातार विस्तार प्राप्त कर रहा है और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा प्रदान कर रहा है. इस विषय पर ताजिकिस्तान गर्जा के शिक्षा मंत्रालय के प्रेस केंद्र के प्रमुख खुर्शीद दावलत अलीजोदा इस प्रकार कहते हैं.
1: گفتن ممکن است که همکاری ها در ساحه معارف و علم یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک مناسبت‌های دو جانبه به حساب رفت.
0: یه اولیدنی هست که شیخ شاور ویگان که یک شیطر می سایوک تاجکستان گنرجا و چین جنوادی گنرجا که بیر دیپاشی سنباندون که پرات هم یک دشاون می سی ایکی. یه سایوک کئی متوپورا قانونی دستاویزون که آدھار پر وکاسیت ہو رہا ہے. جین میں 15 جنوری 2000 کو ہستاکشری تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ پڑوسی پا میتری اور سہیوگ کے سندھی 1 فروری 2020 کو تاجکستان گنرجا کے شکشا منترالے اور چین جنوادی گنرجا کے شکشا منترالے کے بیچ شکشا کھیتر میں سہیوگ سمبندھی سمجھوتا تتھا 5 جون 2024 کو تاجکستان گنرجا کے شکشا اور وگیان منترالے تتھا چین جنوادی گنرجا کے شکشا منترالے کے بیچ شکشانی پرمان پترون اور ویگیانی اپادھیوں کی پرسپرک مانیتا سمبندھی سمجھوتا شامل. इन कानूनी आधारों के अंतर्गत शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग तीव्र गति से विकसित हो रहा है. वर्तमान में ताजिकिस्तान के 10 उच्च शिक्षा संस्थान शंघाई सहयोग संगठन के विश्वविद्यालय नेटवर्क के सदस्य है. इसके अतिरिक्त देश के 13 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में चीनी भाषा की विशेषता शुरू की गई है जिसके माध्यम से ताजिक छात्र चीनी भाषा का गहन अध्ययन कर रहे हैं. साथ ही इस पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के परिणाम स्वरूप प्रतिवार छात्रों और शिक्षकों के अकादमिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसके अलावा विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों, संयोग परियोजनाओं और अनुसंधान गतिविधियों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है. इस सहयोग का स्पष्ट परिणाम ये है कि वर्तमान में लगभग 6000 ताजिक नागरिक चीन जनवादी गणराज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं. वहीं 130 से अधिक चीनी नागरिक ताजिकिस्तान के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ताजिकिस्तान गणराज्य ने खुले दरवाजे की नीति अपनाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास को विशेष महत्व दिया है. चीन जनवादी गणराज्य उन पहले देशों में से एक था जिसने ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी और हमारे देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए. उसी समय से आज तक दोनों देशों के संबंध पारस्परिक सम्मान, अच्छे पड़ोसीपन और पारस्परिक लाभकारी सहयोग सहयोग के आधार पर विकसित हो रहा है। आज चीन तजकिस्तान के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक माना जाता है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय नीति में एक बेल्ट एक मार्ग यानी वन बेल्ट वन रोड की अवधारणा का विशेष महत्व है। मध्य एशिया क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश होने के नाते तजकिस्तान इस पहल के कार्यान्वयन में एक विशेष स्थान रखता है। ये प्रक्रिया न केवल आर्थिक विकास में योगदान देती है बल्कि वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के वर्षों में तजकिस्तान और चीन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुआ। चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ताजिक छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है जिससे ताजिक युवाओं को चीन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के अवसर मिल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष बीजिंग शंघाई शियान उरुमची और चीन के अन्य प्रमुख वैज्ञानिक और शैक्षिक केंद्रों में ताजिक छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये प्रक्रिया उच्च योग्यता विशेषज्ञों की तैयारी और मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तजकिस्तान गणराज्य के विश्वविद्यालय में भी चीनी भाषा का अध्ययन वर्ष दर वर्ष विकसित हो रहा है। कई उच्च शिक्षण संस्थानों में चीनी भाषा केंद्र और कन्फ्यूशियस संस्थान सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र भाषा संस्कृति और चीन के इतिहास के अध्ययन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। चीनी भाषा का अध्ययन आज तक ताजिक युवाओं के लिए व्यावहारिक महत्व प्राप्त कर चुका है और ये उन्हें शिक्षा रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर प्रदान करता है। इस विषय पर तजकिस्तान गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के प्रेस केंद्र के प्रमुख खुर्शीद दौलत अलीजोदा इस प्रकार कहते हैं।
1: باید گفت که جهت گسترش زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در کشور انفراساختار ضروری تشکیل
0: یافته. چینی باشا که پرسر و چین کی سانسکریتی که پریچای که اودیشیا سے دیش میں آوشیاک آدھار بہت سنرچنا وکاسیت کی گئی ہے. اس سندارت میں کانفوشیاس سانستان سکری روپ سے کاریا کر رہے ہیں. یہ سانستان باشا شکشا کے ساتھ سا ویگیانک و سانسکریتک آدم پردان کے متوپورن کیندروں کے روپ میں بھی سیوا پردان کرتے ہیں. विशेष रूप से ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यक्रम कन्फ्यूशियस संस्थान चीनी भाषा अध्ययन और मानवीय सहयोग के प्रमुख मंचों में से एक है। दो सेमेस्टरों के दौरान इसने 2100 से अधिक शिक्षार्थियों को चीनी भाषा पाठ्यक्रमों से जिनमें से एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्तियों तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन का अवसर प्रदान किया गया। शिक्षण कार्य एक से एच एस का पांच स्तरों तक के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित किया गया। अध्ययन समूहों की संख्या दर्जनों तक पहुंच चुकी है और चीनी भाषा सीखने की बढ़ती मांग के कारण ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वसंत और शरद ऋतु सेमेस्टरों के दौरान 8000 से अधिक शिक्षण घंटे संचालित किए गए जिनमें चीनी और स्थानीय शिक्षक संयुक्त रूप से कार्यक्रम रहे। चीन जनवादी गणराज्य के विशेषज्ञों तथा स्थानीय और विदेशी शिक्षकों की सहभागिता से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की गई और चीनी भाषा का प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया। ज्ञान स्तर के मूल्यांकन के क्षेत्र में वर्ष 2025 में HSK और HSK का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षाओं के 4 सत्र आयोजित किए गए जिनमें कुल मिलाकर 2600 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ये अंकड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा चीनी भाषा सीखने के प्रति युवाओं के बढ़ती रुचि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तजकिस्तान गणराज्य के शिक्षा क्षेत्र में राजनीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आधुनिक तकनीकों की समावेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास पर केंद्रित है। इस दिशा में चीन जनवादी गणराज्य का अनुभव तजकिस्तान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन की राजनीतिक और कूटनीति संस्कृति में मानवता के साझा भविष्य वाला समुदाय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने विभिन्न संस्कृतियों के प्रति समान बढ़ाने और देशों के संयुक्त विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित थे। तजिकिस्तान और चीन के संबंधों में भी ये विचार सक्रिय रूप से परिलक्षित होता है। हाल के वर्षों में तजिकिस्तान गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संबंध एक नए स्तर पर पहुँच कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीनी भाषा का अध्ययन, शैक्षणिक आदान प्रदान और तजिकिस्तान चीन की मित्रता को और अधिक मजबूत करना है। चीनी भाषा शंघाई सहयोग संगठन की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में विशेष महत्व रखती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे में चीनी भाषा का ज्ञान कूटनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तजिकिस्तान और चीन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग केवल छात्रों की शिक्षा तक सीमित नहीं है। आज दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और संयुक्त वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैज्ञानिक मंच शिक्षकों और प्रोफेसरों का आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं इन सहयोगों के प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है। सांस्कृतिक आदान प्रदान लोगों के बीच मित्रता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत ताजिक छात्र और युवा चीन की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से परिचित होने का अवसर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार चीनी विद्यार्थी भी तजिकिस्तान की संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में गहरे रुचि दिखाते हैं। ये प्रक्रिया तजिकिस्तान और चीन की मित्रता को मजबूत करने के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। दोनों देशों के बीच शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग का विकास प्रतिस्पर्धी विशेषज्ञों की तैयारी, वैज्ञानिक और शैक्षिक वातावरण के विस्तार तथा लोगों के बीच मित्रता को मजबूत करने के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। तजिकिस्तान के राष्ट्र नेता का हालिया राजकीय दौरा चीन जनवादी गणराज्य के न केवल दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग का प्रतीक है, बल्कि इससे रणनीतिक संबंधों के विस्तार और संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी माना जाता है। ऐसे दौरों के दौरान महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, शिक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग एक नए चरण में प्रवेश करता है। इसलिए तजिकिस्तान और चीन के संबंधों के विकास में इन उच्च स्तरीय दौरों की भूमिका का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार उच्च स्तरीय कूटनीतिक देशों के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। उच्च स्तरीय वार्ताओं के परिणाम और हस्ताक्षरी दस्तावेज ये स्पष्ट करते हैं कि तजिकिस्तान और चीन ने दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की है। ये सहयोग नए रोजगार अवसरों के सृजन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने तथा सतत सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस संदर्भ में तजिकिस्तान और चीन के संबंध पारस्परिक लाभकारी, भरोसेमंद और दीर्घकालिक सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। उनके भविष्य की दिशा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के और अधिक विस्तार की ओर अग्रसर है। प्यारे श्रोतो, ये थे हमारे कार्यक्रम तजिकिस्तान और विश्व। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ, जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी ये डरता नहीं। लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम, जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता माधव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

0: تاجکستان گنرژیا اورچین جنوادی گنرژیا کے بیچ سامبان وارتمان دور میں رانانیتی سجداری کے ستر تک پہنچ چکے ہیں. دونوں دیشوں کے بیچ راجنیتک آرتھک سانسکرتک اور وشیش روپ سے شیکشک تتھا ویگیانک کھیتروں میں سہیوگ تیزی سے وکاسیت ہو رہا ہے. نمستے پیارے شروتاؤ, کاریہکرم تاجکستان اور وش کے اس نئے آنکھ میں ہم تاجکستان گنرژیا اور چین جنوادی گنرژیا کے بیچ ویگیانک ایوان شیکشی سہیوگ پر چرچا کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. تاجکستان گنرژیا اور چین جنوادی گنرژیا کے بیچ شکشا وگیان اور سانسکرتی کے کھیتروں میں سہیوگ حال کے ورشوں میں وکاس کے ایک نئے استر پر پہنچ گیا ہے. آج سے سینکڑوں تاجی ودیارتھی چین کے پرتشٹھت وشو ودیالیوں میں ادھیاین کر رہے ہیں اور وبھن ترشی سنیوگ کاریہکرموں کے مادھیم سے اپنے گیان کوشل اور ویاوسایک انوبھاو کو سمردھ بنا رہے ہیں. چین کی ودیش نیتی میں شکشی سہیوگ کو وشیش مہت دیا جاتا ہے. شیشی سجیداری سانسکرتک آدان پردان تتھا مانوتا کے ساجھا بھوشیہ والے سمودائے کی اودھارنا کو انتراشری کوتنیتی کے متوپورن تتووں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. یہ اودھارنائیں نہ کیول دیشوں کے بیچ سمبندھوں کے وکاس کو پرتبمبت کرتی ہے بلکہ وبھن راشٹروں اور جنتا کے بیچ مترتا آپسی سماج اور وشواس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی انوکول آدھار پردان کرتی ہے. اسی کارن تاجکستان اور چین کے بیچ شکشا تتھا وگیان کے کھیتر میں سہیوگ لگاتار وستار پراپ کرا ہے اور دونوں دیشوں کے رانانیتی سمبندھوں کو نئی دشا پردان کرا ہے. اس وشے پر تاجکستان گنرژیا کے شکشا منترالے کے پریس کیندر کے پرمکھ خورشید دولت علی زودہ اس پرکار کہتے ہیں.
1: گفتن ممکن است که همکاری ها در صحه معارف و علم یکی از سمت های افضلیت نوکی مناسبت های دو جانبه به حساب رفت.
0: یه اولیگنی هی که شیخ شاور ویگان که ایک شیطر می سیوک تاجکستان گنرژیا و چین جنوادی گنرژیا که بیر دیفاشی سنباندون که پرات همی ایک دشاون می سی ایکی. یه سیوک کئی متوپور هم قانونی دستاویزون که آدھار پر وکاسیت ہو رہا ہے. جین میں 15 جنوری 2000 کو ہستاکشری تاجکستان گنرژیا اور چین جنوادی گنرژیا کے بیچ پڑوسی پا میتری اور سہیوگ کے سندھی 1 فروری 2020 کو تاجکستان گنرژیا کے شکشا منترالے اور چین جنوادی گنرژیا کے شکشا منترالے کے بیچ شکشا کھیتر میں سہیوگ سمبندھی سمجھ ہوتا تتھا 5 جون 2024 کو تاجکستان گنرژیا کے شکشا اور وگیان منترالے تتھا چین جنوادی گنرژیا کے شکشا منترالے کے بیچ شکشانی پرمان پتروں اور ویگیانک اپادھیوں کی پرسپرک مانیتا سمبندھی سمجھ ہوتا شامل ہے. ان قانونی اداروں کے انترگت شیشی اور ویگیانی سہیوگ تیور گتی سے وکاسیت ہو رہا ہے. ورتمان میں تاجکستان کے 10 اچ شکشا سنستھان شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے وشو ودیالے نیٹورک کے سدسیہ ہے. اس کے انترگت دیش کے 13 اچ شکشانی سنستھانوں میں چینی بھاشا کی وشیشتا شروع کی گئی ہے جس کے مادھیم سے تاجی چھاتر چینی بھاشا کا گہن ادھیان کر رہے ہیں. ساتھ ہی اس پارسپرک روپ سے لبھکاری سہیوگ کے پرینام سوروپ پرتیوار چھاتروں اور شکشکوں کے اکادمک آدان پردان کاریہکرم آیوجت کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وبھن ویگیانک کاریہکرموں سنیوگ پریوجناؤں اور انوسندھان گتیویدھیوں کا بھی سفلتا پوروک سنچالن کیا جا رہا ہے. اس سہیوگ کا سپشٹ پرینام یہ ہے کہ ورتمان میں لگ بھگ 6000 تاجک ناگرک چین جنوادی گنرژیا کے اچ شکشا سنستھانوں میں ادھیاین کر رہے ہیں. وہیں 130 سے ادھک چینی ناگرک تاجکستان کے اچ شکشا سنستھانوں میں شکشا پراپت کر رہے ہیں. سوتنترتا پراپت کرنے کے بعد تاجکستان گنرژیا نے کھلے دروازے کی نیتی اپنائی اور انتراشٹری سہیوگ کے وکاس کو وشیش مہتو دیا ہے. چین جنوادی گنرژیا ان پہلے دیشوں میں سے ایک تھا جس نے تاجکستان کی سوتنترتا کو مانیتا دی اور ہمارے دیش کے ساتھ راجنائک سمبندھ ستھاپت کیے. اسی سمے سے آج تک دونوں دیشوں کے سمبندھ پارسپرک سمان اچھے پڑوسی پن اور پارسپرک لبھکاری सहयोग के आधार पर विकसित हो रहा है। आज चीन तजकिस्तान के प्रमुख रणनीति साझेदारों में से एक माना जाता है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय नीति में एक बेल्ट एक मार्ग यानी वन बेल्ट वन रोड की अवधारणा का विशेष महत्व है। मध्य एशिया क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश होने के नाते तजकिस्तान इस पहल के कार्यान्वयन में एक विशेष स्थान रखता है। ये प्रक्रिया न केवल आर्थिक विकास में योगदान देती है बल्कि वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के वर्षों में तजकिस्तान और चीन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुआ। चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ताजिक छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है जिससे ताजिक युवाओं को चीन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के अवसर मिल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष बीजिंग शंघाई शियान उरुमची और चीन के अन्य प्रमुख वैज्ञानिक और शैक्षिक केंद्रों में ताजिक छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये प्रक्रिया उच्च योग्यता विशेषज्ञों की तैयारी और मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तजकिस्तान गणराज्य के विश्वविद्यालय में भी चीनी भाषा का अध्ययन वर्ष दर वर्ष विकसित हो रहा है। कई उच्च शिक्षण संस्थानों में चीनी भाषा केंद्र और कन्फ्यूशियस संस्थान सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र भाषा संस्कृति और चीन के इतिहास के अध्ययन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। चीनी भाषा का अध्ययन आज तक ताजिक युवाओं के लिए व्यावहारिक महत्व प्राप्त कर चुका है और ये उन्हें शिक्षा रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर प्रदान करता है। इस विषय पर तजकिस्तान गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के प्रेस केंद्र के प्रमुख खुर्शीद दौलत अली जोदा इस प्रकार कहते हैं।
1: باید گفت که جهت گسترش زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در کشور انفراساختار ضروری تشکیل
0: یافته. چینی باشا که پرسر و چین کی سانسکریتی که پریچای که اودیشیا سے دیش میں آوشیاک آدھار بہت سنرچنا وکاسیت کی گئی ہے. اس سندار میں کانفوشیاس سانستان سکری روپ سے کاریا کر رہے ہیں. یہ سانستان باشا شکشا کے ساتھ ساتھ ویگیانک اور سانسکریتک آدان پردان کے متوپورن کیندروں کے روپ میں بھی سیوا پردان کرتے ہیں. रूप से ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यक्रम कन्फ्यूशियस संस्थान चीनी भाषा अध्ययन और मानवीय सहयोग के प्रमुख मंचों में से एक है। दो सेमिस्टरों के दौरान इसने 2100 से अधिक शिक्षार्थियों को चीनी भाषा पाठ्यक्रमों से जिनमें से एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्तियों तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन का अवसर प्रदान किया गया। शिक्षण कार्य एक से एच एस का पांच स्तरों तक के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित किया गया। अध्ययन समूहों की संख्या दर्जनों तक पहुंच चुकी है और चीनी भाषा सीखने की बढ़ती मांग के कारण ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वसंत और शरद ऋतु सेमेस्टरों के दौरान 8000 से अधिक शिक्षण घंटे संचालित किए गए जिनमें चीनी और स्थानीय शिक्षक संयुक्त रूप से कार्यक्रम रहे। चीन जनवादी गणराज्य के विशेषज्ञों तथा स्थानीय और विदेशी शिक्षकों के सहभागिता से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की गई और चीनी भाषा का प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया। ज्ञान स्तर के मूल्यांकन के क्षेत्र में वर्ष 2025 में HSK और HSK का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षाओं के 4 सत्र आयोजित किए गए जिनमें कुल मिलाकर 2600 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ये अंकड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा चीनी भाषा सीखने के प्रति युवाओं के बढ़ती रुचि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तजकिस्तान गणराज्य के शिक्षा क्षेत्र में राजनीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आधुनिक तकनीकों की समावेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास पर केंद्रित है। इस दिशा में चीन जनवादी गणराज्य का अनुभव तजकिस्तान के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन की राजनीतिक और कूटनीतिक संस्कृति में मानवता के साझा भविष्य वाला समुदाय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने विभिन्न संस्कृति देशों के प्रति समान बढ़ाने और देशों के संयुक्त विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित है। तजिकिस्तान और चीन के संबंधों में भी ये विचार सक्रिय रूप से परिलक्षित होता है। हाल के वर्षों में तजिकिस्तान गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संबंध एक नए स्तर पर पहुँच कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीनी भाषा का अध्ययन, शैक्षणिक आदान प्रदान और तजिकिस्तान चीन की मित्रता को और अधिक मजबूत करना है। चीनी भाषा शंघाई सहयोग संगठन की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में विशेष महत्व रखती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे में चीनी भाषा का ज्ञान कूटनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तजिकिस्तान और चीन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग केवल छात्रों की शिक्षा तक सीमित नहीं है। आज दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और संयुक्त वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैज्ञानिक मान, शिक्षकों और प्रोफेसरों का आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं इन सहयोगों के प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है। सांस्कृतिक आदान प्रदान लोगों के बीच मित्रता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत ताजी छात्र और युवा चीन की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से परिचित होने का अवसर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार चीनी विद्यार्थी भी तजिकिस्तान की संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में गहरे रुचि दिखाते हैं। ये प्रक्रिया तजिकिस्तान और चीन की मित्रता को मजबूत करने के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। दोनों देशों के बीच शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग का विकास प्रतिस्पर्धी विशेषज्ञों की तैयारी, वैज्ञानिक और शैक्षिक वातावरण के विस्तार तथा लोगों के बीच मित्रता को मजबूत करने के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। तजिकिस्तान के राष्ट्र नेता का हालिया राजकीय दौरा चीन जनवादी गणराज्य के न केवल दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग का प्रतीक है, बल्कि इससे रणनीतिक संबंधों के विस्तार और संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी माना जाता है। ऐसे दौरों के दौरान महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, शिक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग एक नए चरण में प्रवेश करता है। इसलिए तजिकिस्तान और चीन के संबंधों के विकास में इन उच्च स्तरीय दौरों की भूमिका का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार उच्च स्तरीय कूटनीति देशों के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। उच्च स्तरीय वार्ताओं के परिणाम और हस्ताक्षरित दस्तावेज ये स्पष्ट करते हैं कि तजिकिस्तान और चीन ने दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की है। ये सहयोग नए रोजगार अवसरों के सृजन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने तथा सतत सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस संदर्भ में तजिकिस्तान और चीन के संबंध पारस्परिक, लाभकारी, भरोसेमंद और दीर्घकालिक सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। उनके भविष्य की दिशा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के और अधिक विस्तार की ओर अग्रसर है। प्यारे श्रोताओं, ये थे हमारे कार्यक्रम तजिकिस्तान और विश्व। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

0: आपको बता दें कि कई लोगों के शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। उन लोगों की रोटी से दूर रहना चाहिए। अगर किसी के शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक हो जाए तो वो काफी गंभीर संकट पैदा कर सकती है। रोटी एक ऐसी चीज है जो हर कोई खाना चाहता है। कई लोग मोटापा से बचने के लिए चावल छोड़ दोनों टाइम रोटी ही खाते हैं। हालांकि अधिक रोटी खाना भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम आपको रोटी ज्यादा खाने से सेहत पर होने वाले नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों की चावल क्रिया अच्छी होती है उन्हें तो कोई खास नुकसान नहीं होती है, लेकिन जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं, यदि वो बासी रोटी खा लेते हैं तो वो फूड पॉइजन का शिकार हो सकते हैं। फूड पॉइजन खतरनाक होता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। वहीं रोटी सेहत के लिए अच्छा है या खराब, इसका असर आपकी पाचन क्रिया पर भी होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी बख्तियार शमसीजोदा ने इंसान के लिए बड़े उत्यादों के नुकसान के बारे में इस प्रकार कहा है।
1: इस्तेमाल ज्यादा महसूलों की नोनी मेतावान बवाजी सलामती तासीर मनफी रसोना सबब असोसी जरार महसूलों की नोनी बा सलामती इन पेश असमा महसूलों की नोनी एक आज और दी सफेद और थोय तुझा कर दश
0: बड़े उत्पादों का अत्यधिक सेवन मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचना सकते है। बड़े उत्पादों से होने वाले नुकसान का मुख्य कारण सबसे पहले सफेद आटे से बने बड़े उत्पाद है। परिष्कृति आटे और बिना आहार फाइबर के बने आटे में उच्च स्तर के प्रभावी प्रोटीन होती है। इसका मतलब है कि रक्त शर्करा का खतरा तेजी से बढ़ता है, जिसमें मानव शरीर में उच्च इंसुलिन का स्तर होता है। नतीजतन ये मधुमेह, मोटापा और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। दूसरा कारण ये कि सफेद आटे और आहार फाइबर बहुत कम होता है। फाइबर पाचन तंत्र यानी आंतों और पेट के समुचित कामकाज में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कब्ज को रोकता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। जब फाइबर कम होता है तो पाचन तंत्र को काम करना मुश्किल हो जाता है और आंतों की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं की गद्दा होती है। सफेद के रोटी उत्पादों में अक्सर कैलोरी बहुत अधिक होती है और लोग बड़ी मात्रा में इसका सेवन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के बाहिन हिस्से में आंतरिक वसा जमा हो जाती है। ये संचय विशेष रूप से पेट के क्षेत्र में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के जोखिम को बढ़ा सकता है। अन्य रोटी उत्पादों के ग्लूटेन भी होता है, जो अनाज में पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन है। कुछ लोगों में ग्लूटेन का सेवन एलर्जी का कारण बन सकता है। ये स्थिति विभिन्न एलर्जी रोगों की तरह पाचन तंत्र में असुविधा पैदा कर सकती है। मानव स्वास्थ्य के लिए रोटी उत्पादों के नुकसान को रोकने और काम करने के लिए काली और कम कैलोरी वाले रोटी का उपयोग करके ब्रेड यानी रोटी उत्पादों का संयम से सेवन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार के उत्पादों में विटामिन, खनिज और अन्य लाभकारी पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और विटामिन की कमी को रोकते हैं। दरअसल रोटी में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आपको अपने शरीर के लिए हर रोज करीब 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की लेना चाहिए। लेकिन यदि आप तीनों टाइम रोटी खाते हैं तो ऐसे में आपके शरीर को 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। हाँ, ज्यादा रोटी खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए। वजन बढ़ना, ज्यादा रोटी खाने से वजन बढ़ सकता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शुगर की समस्या, ज्यादा रोटी खाने से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जो मधुमेह की समस्या का कारण बन सकती है। पाचन समस्या, ज्यादा रोटी खाने में पाचन समस्या हो सकती है, जैसे कि कब्ज, दस्त और पेट दर्द। हृदय रोग यानी ज्यादा रोटी खाने में हृदय रोग की समस्या हो सकती है। جیسے کی وچا رکھ چاپ اور ہریدائی گھات ویٹامین اور منرال کی کمی زیادہ روٹی کھانے سے ویٹامین اور منرالز کی کمی ہو سکتی ہے جو شریر کے لیے آوشیک ہے توچا کی سمسیا زیادہ روٹی کھانے سے توچا کی سمسیا ہو سکتی ہے جیسے کی منہاسے اور توچا کی سوجن ان سمسیاؤں سے بچنے کے لیے یہ مہتوپورن ہے کہ آپ اپنے آہار میں سنتولن بنائے رکھیں اور زیادہ روٹی کھانے سے بچیں کیا آپ جانتے ہیں کہ روٹی کھانے کے دوران بعد پانی پینے ہمارے سوستھا کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے پاچن تنتر پر پڑتا ہے روٹی کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک دودھ بھی نہ پیے ہمارے اچھے سوستھا کے لیے پوشٹک آہار بے حد ضروری ہے پوشٹک آہار کھانے سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اکثر ہم نے اپنے بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ کھان کے سمے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن شاید ہی کوئی ان باتوں کو مانتا ہوگا ان سبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر ہمارے سوستھا پر پڑتا ہے ہمارا شریر میں 75% پانی سے بنا ہوا ہے ہر روز 5 سے 7 لیٹر پانی پینا چاہیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روٹی کھانے کے دوران بعد

की शिकार हो सकती है। प्यारे सुनने वालों, ये थी हमारे तिपानी रोटी का ज्यादा इस्तेमाल करने और उनके नुकसान हमारे शरीर में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहे, हमारे रेडियो के साथ रहे।

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ, जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी, प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी ये डरता नहीं, लुट जाएंगे मिट जाएंगे मर जाएंगे हम, जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाया है। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिले हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1900

ऊंचो हाथर को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली उत्तर प्रदेश बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता मधाव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येडेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

कोई हसीना जब रुक जाती है महबूबा महबूबा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हाँ जब तक है जा होली के दिन दिल खेल जाते हैं इस मूवी के गाने हैं शोले का गाना जब तक है जा गाने का गायक लता मंगेशकर संगीतकार राहुल देव बुर्मन गीतकार आनंद बख्शी कलाकार हेमा मालिनी धर्मेंद्र अमजाद खान हैं इस गाने में हेमा मालिनी ने एक अच्छा डांस भी किया है जिसको लोगों ने पसंद की थी नोजिया करमतलो प्रसिद्ध ताजिक गायिका है जिसको न केवल ताजिकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी सुनकर पसंद करते हैं विशेष रूप से हिंदुस्तान में नोजिया करमतलो ने भारत में संगीत सीखी थी और भारत में रहते समय इस कला को बारीकी से अध्ययन किया था अपने पहले कॉन्सर्ट में उसने कई हिंदी गाने दर्शकों के लिए पेश की थी जिनको लोगों द्वारा पसंद किए गए उनके बाद नोजिया ने दूसरे हिंदी गाने पेश करने लगे जो न केवल हमारे देश में बल्कि हिंदुस्तान और हिंदी गानों के प्रेमियों के बीच मशहूर हो गए हिंदी गानों में से एक हाँ जब तक है जाने जहाँ है जिसका एक पार्ट आप पेश करेंगे